मरदी सूरज मरदा मरदा ते जग मरदा ए हवा मरदी सूरज मरदा मरदा ते जग मरदा वे जे कसमा खाना मरदा कोई फिर सब तो पहला रब मरदा।

0: stop that and look at me.
1: Oh, God, मैं अभी आया.
0: सुती सुती, राहुल मिला क्या?
2: नहीं मिला.
3: ढाका FM 90.4.